0: धीमी ततक झम ततक झुणु तक ध्रुगु तत्त झुणु की ततक
1: दृग धीनी ता धीनी ता धीनी ता धीनी ता ता गुरगुर धिन ना केता ता गुरगुर धिन ना केता।